ये कहता नवाजन ताली न चाले गाड़ी एक हाथा गानी मग ये ते सन्ना गंपोरी चल पीरा लजानी।

0: अरे कसला थरथराट हो डॉट आणि उडी उडाणा
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे नहीं समझे।

0: अगन अगन गाम ही फुटला अग गाम ही फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट गाम ही फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट
1: तुमची एवढी आराधना केली तरी तुमचा ह्याच अवतार
2: रो मत गंगू ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू इन आंसुओं को पोछ दो ये बहुत कीमती है रे।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।